0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।

वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर।

0: जी जान तारो मसालो हर वे जे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बे डरंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: पार्लियामेंट में सानी जी शफाफ जांच करने मुतालबो करे छो सेनेट ए कौमी असेंबली में खसूसी कमेटी ठाण वारा ठहराव मंजूर। अपोजिशन पारा सानी की जांच लाइ जोड़े हुकूमती कमेटी के रद्द करे छो। सानी की जांच लाइ अपोजिशन की सरबराही में हुकूमती कमेटी कायम करण जो मुतालबो। सेहत वाले वजीर मुस्तफा कमाल चवा भिमसाने में मुलविस को भी शख्स न बचंद सभी ऑफिसर के लाइन हाजिर किया वो कोई भी एमएनए या सेनेटर फोन न करे। अपोजिशन रोड मैप दे तारीखन ए कमेटिन त मामले के महदूद न कयो वञे कहीं बे साने का बचण लाए मामले जो हल कयो वेंदो। इस्लामाबाद के पिम्स में पेश आयल साने की जांच जारी। वजीर आजम पारा जॉइंट कमेटी पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत बेन सा बयान कलम बंद करे वरता। फौजी फोती बारन के वारसन का बयान वरता वया। जांच कमेटी वजीर आजम की शुरुआती रिपोर्ट पेश कंदी। कानून वारे वजीर आजम नजीर दारन जिम्मेवार खिलाफ सख्त कार्रवाई भी थी। सिंध असेंबली नवन सूबन के कयाम तोड़े नवन यूनिट्स के हवाले से थन्दड़ गाल बहस लाइ रिथ मंजूर कर वरती। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादिर शाह की सदारत हेठ थो। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थन्दड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जी मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादिर शाह रिथ सूमर वे ढी ब कलाक बहस किया वो। रिथ में पाकिस्तान में नवन सूबन ए यूनिट्स के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध के सरहदन से बे छेड़छाड़ वा नुकता शामिल। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल कर मामले से बहस किया वे।

सिंध असेंबली ऐं नवनि सूबनि जे मामलनि ते ऐवान में बहस लाइ तयार। पीपल्स पार्टी जे एम क्यू एम खे सिंध जे विरहाङे वारो ख़्वाब न ॾिसण जी सलाह। सूबाई वज़ीरनि ऐं एम पी एज़ चयो आहे त सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ हिकु न पर केतिरा

0: ठहराव मंजूर चीफ असेंबली भेरो वरी ठहराव मंजूर करे वठंदी नंढी अस्पताल न संभाले सघंदड़ सूबो कीअं संभालींदा नवनि सूबनि बाबति फ़ैसिलो अवाम जो हूंदो पीपल्स पार्टी अवाम सां गॾु आहे सिंध विरहाइण जी ॻाल्हि कंदड़नि सां अवाम ई गॾु नाहे एम क्यू एम जे दोस्तनि खे बि ठहराव जी हिमायत करणु घुर्जे मुख़ालिफ़ धुर अॻवान अली ख़ुर्शीद चयो आहे त हुननि जो पुराणो मुतालबो रहियो आहे त नवनि सूबनि जे मामले ते बहस थियणु घुर्जे पर हाणे पीपल्स पार्टी वारनि पाण बहस लाइ रिथ जमा कराई आहे गवर्नर्स खे बहितर बणाइण लाइ इंतज़ामी यूनिट्स ॾांहुं वञणो पवंदो तहरीक इंसाफ़ जे मेंबर सजाद सुमरे बि नवनि सूबनि जी मुख़ालिफ़त कंदे चयो आहे त पहिरियां आवाम जा मसला हल करे ॾेखारियो पोइ सूबनि जी ॻाल्हि कयो मौसमियात खाते पंजाब ऐं केपीके में अॼु खां तेज़ बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अक थी करे छॾी अवाम खे लैंडस्लाइडिंग खां मोहतात रहण जो मशवरो मौसमियात खाते चयो आहे त सुभाणे खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ऐं केपीके में तेज़ बरसातूं पवंदियूं मथां इलाइक़नि में लैंडस्लाइडिंग जो बि ख़तरो आहे किरण सबबु मां लाश हथ 12 वरनि जे मीर मोहम्मद गोपांग जो 36 कलाकनि बाद मेहराण भरिसां लाश मिली वियो आहे हुन खां अॻु 13 सालनि जे जुनेद ऐं लाहौती गोपांग जो लाश मिलियो हो 11 वरनि जे मुंतज़िर मेहदी गोप जारी आहे नींदर मीर मोहम्मद गोपांग जो लाश पहुचण ते इलाइक़े में सोग छाइजी वियो आहे आलिन नखियुनि सां बड़े मिटी माउ हवाले कयो
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: मालवन भारन लाए खुश खबरी 50 सालन खां आजमायल सखर वारन जो जी जान ढोर चारो मसालो जानवरन में खीर ऐं गोश्त वधाए अवां के खुशहाल बनाए हर पंसार ऐं जानवरन जे डॉक्टरन वट दस्तियाब आहे
3: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर Honda Motorcycle जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
4: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008 5569
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी FM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चुपर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03008-5569।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
3: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
4: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: हथे गुल मेंदी पेरे गुल मेंदी
2: आई अदी अज त डाडी खुश पई नजर अची
1: छो न खुश थिया अदी जदे खा मुजे मुड़स ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो खरायो आहे त खीर जी पैदावार बीणी थी वई आहे ऐ हाणे पैसा भी बीणा था अचन ही दिस सोनियो चूड़ियो
2: मां भी वही चवा उन के ढोरन के सखर वारन जो चारो मसालो ही खाराए
3: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर आई जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करयो
4: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वदन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन हर जुमे छंछर आचर ते बगैर फीस जे चेकअप कयो विंदो याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पोंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में

0: 2196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
1: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
2: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
3: जहाँ उम्मीद के दिए जलते हैं
4: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000272334 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03018-65453
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
1: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 03013992836
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
9: बेवफा चांडिया कंबर वारा तू साका तो पंजो शहर छदी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

आप सुन रहे थे जीए एफएम।

फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वार जो दौरो ISPR मूजिब फील्ड मार्शल के POF जे पैदावारी सलाहियतन मुल्क जे दिफाई सनअती बुनियाद के मजबूत करण में इदारे जे किरदार बाबति तफ़सीली ब्रीफिंग डिनी। POF जे मुख़्तलिफ़ ऑपरेशन मकामी सतह ते मुख़्तलिफ़ फौजी सामान जी तैयारी बाबति आगाह कयो वियो। खेस ब्रीफिंग डिनी वई त POF जिदत पाकिस्तान जे दिफाई पैदावार जे सलाहियत में वाध लाइ अहम किरदार अदा करे रहियो आहे। फील्ड मार्शल मुकामी तौर ते तैयार कयल हथियारनि ऐं गोला बारूद जे टेस्ट ऐं आज़माइशन जो मुआइनो कयो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दौरो। इमीग्रेशन काउंटर्स ते पहुची वहिंवार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो त सिस्टम डाउन थियण जी सूरत में मुतबादिल इंतज़ाम मौजूद रखियो वञे। इमीग्रेशन जो अमल कंहिं बि सूरत में न रुकणु घुर्जे। जाली दस्तावेज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। ईरान जे इजाज़त खां सवाइ कंहिं बि जहाज़ खे आबनाह हुर्ज़ मां गुज़रण जी इजाज़त न आहे। पासदारनि इनकलाब अमरीकी सदर जे आबनाह हुर्ज़ खोलण वारे बयान ते रदि अमल। पासदारनि इनकलाब मूजिब अमरीका तेल जूं क़ीमतूं क़ाबू करण ऐं पंहिंजूं नाकामियूं लिकाइण कूड़ा बयान ॾेई रहियो आहे। ईरान ख़िलाफ़ जेसी ताईं अमरीकी फ़ौजी कार्रवायूं ख़तम न थींदियूं तेसी ताईं आबनाह हुर्ज़ ऐं अमरीकी मुदाख़लत बर्दाश्त न कबी। अमरीका वेनेज़ुएला 58 अरब बैरल खां वधीक तेल जे ज़खीरनि ते कंट्रोल हासिल करे वरितो। अमरीकी सदर जो चवणु आहे त अमरीका वेनेज़ुएला सां दुनिया जे तारीख़ में तेल जो सभ खां वॾो मुआदो कयो आहे। हिन मुआदे सां वेनेज़ुएला खे वॾी कामयाबी ऐं खु़शहाली मिलंदी। अमरीका ऐं वेनेज़ुएला में लाॻापा अघ खां वधीक मज़बूत थींदा। मौसमियात खाते पंजाब ऐं KPA में अॼु खां तेज़ बरसातुनि जो सिलसिलो शुरू थियण जी अॻकथी करे छॾी। अवाम खे लैंडस्लाइड खां मुहतात रहण जो मशवरो। मौसमियात खाते चयो आहे त सुभाणे खां 5 सेप्टेम्बर ताईं पंजाब ऐं KPA में तेज़ बरसातियूं पवंदियूं। मथां इलाइक़नि में लैंडस्लाइडिंग जो बि ख़तरो आहे। शहदाद कोट में घर मां मुबैना बेदख़ल करण ख़िलाफ़ जमाली बिरादरीअ जे सॾ ते शहर में शटर बंदि हड़ताल। जमाली बिरादरीअ जे माण्हुनि चयो त लखपत रोड वारे इलाइक़े में व्याजखोर ऐं कब्ज़ा माफ़िया पैसा न ॾियण तां घर खां बेदख़ल करे छॾियो आहे। इल्ज़ाम हेठि आयल वापारी जगदेश कुमार चवणु आहे त जॻह जो 11 साल अदालत में केस हलियो। फ़ैसिलो मुंहिंजे हक़ में आयो आहे। ब्लैकमेल कयो पियो वञे।

0: जो लाश बे हथ अची वो वी अगो रक्षा हों थियण सबब चार नींगर मीरवा किनाल में बुडी वया हुआ। छटीह कलाक बाद बुडी वयल बारह वर के मीर ममन जो लाश बे हथ कयो वो लाश घर पहुंचण से कोहराम मची वो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 024206010।
4: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद ठरी रोड मेहरापुर 03003385 69।
5: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 03201800003।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
6: न अदा।
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
6: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो GFM 94।
10: साथी जिंदगी में करते रहते हो लेकिन काम में तुमने आज तक नहीं की, आदत नहीं है तुम्हें।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: मैं छुपा लूंगा।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पथरी मसाने की पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे की खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।

0: जय निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073529210।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अपना शहर, अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद जे पिम्साने जी शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश, अगूणे सेक्रेटरी शाहिद खान शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा कराए छी। रिपोर्ट में रेस्क्यू इमदादी कमन दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र, गैर हाजिर अमले खिलाफ कार्रवाई भी सिफारिश थियल। पिम्स में इलाज ए सहूलत की खोट जो भी जिक्र किया वो। साने के जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करने की भी सिफारिश कई वही। जरिए जो चवण है तो रिपोर्ट पब्लिक करने जो अख्तियार वजीर आजम।
2: फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो, जदीद हथियारों के ट्रायल जो मुशाहिदो कयो। आईएसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन में ऑपरेशन्स मकामी सतह से तैयार थींदड़ जदीद हथियारों बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कयल जदीद हथियारों की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ए मकामी पैदावार सलाहियतन ए टेक्निकल में जिदत जो अज़म वरजायो।
1: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची दौरो, जाली कागजन से सफर कंदड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमीग्रेशन काउंटर से भी कम कार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चे तो सिस्टम डाउन थे सूरत में मुतबादल इंतजाम होजन घुर्जे, इमीग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे।

0: ईरान की इजाजत का सिवाय को भी जहाज आबना हरमुज में गुजरी न सकंदो। पासदार इंकलाब जो अमेरिकी सदर से आबना हरमुज खोलण वाले ध्यान से रद्द अमल। पासदार इंकलाब मूजिब अमेरिका नाकामी लिकाण लाए पूरा बयान दे रो है। ईरान खिलाफ जेस तई अमेरिकी फौजी कार्रवाई खत्म न थन्दू तेस तई आबना हरमुज में मुदाखलत बर्दाश्त न कद।
1: अमेरिका वेंजवेला के 58 अरब बिलर का तेल के जखीरन से कंट्रोल हासिल कर वरतो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चया है अमेरिका वेंजवेला से दुनिया की तारीख में तेल जो सब का वो मुआदो किया है। इन मुआदे से वेंजवेला की वही कामयाबी खुशहाली मिली। अमेरिका वेंजवेला में लागापा मजबूत थन्दा।
0: मौसमियात खाते पंजाब ए केपीके में अज का तेज बरसात जो सिलसिलो शुरू थियण की अगकथी कर छी। अवाम के लैंडस्लाइडिंग का मोहतात रहने का मशवरो। मौसमियात खाते है अज का 5 सितंबर तई पंजाब ए केपीके में तेज बरसात पवंद मथान इलाक में लैंडस्लाइडिंग जो भी खतरो है।
1: कोटड़ की भरसा मीरवा केनाल में बुडी वेल चौथे बार जो लाश बेहथ बी अगो रक्षा हूंद थियण सबब चार नींगर मीरवा केनाल में बुडी वया। 36 कलाक बाद बुडी वेल बारन वर के मीरव मन जो लाश बेहथ किया वो नींगर जो लाश घर पहुंचने से कोराम मची वो।
0: कुंडरी वेझो फसल के भेल तां बिन धुरिन में झेड़ो कुआड़ियों लठू लगण सब 5 जणा मरणी। गोठ लखानो रिंद में फसल के भेल रिंद ए भील बिरादरी में झेड़ो थो। झेड़े में कुहाड़ियों लठियों सबब भेल बिरादरी जा 5 जणा जख्मी थे। जख्मी के तालके अस्पताल कुंडी नियो वो हमलो कंदड़ फरार थी वया।

0: पाणी जो दबाव वधण सबब सूरत हालगण थी अचोगी। पाणीअ जो तेज वहकरे ऐं ज़मीन में खाद सबब ॻोठ में क़ाइम स्कूल लुड़ी वियो। मुतासिर ॻोठाणनि जो हुकूमत खां बुरड़ा पतण वारे हंधि हिफ़ाज़ती उपाउ वठण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385।

0: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर आई जानवर जे डॉक्टर का नालो वठी खरीद करियो।
1: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मैरापुर असा वट जगह जो डारियो जगह जा पावा आई पाइप डेढ़ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन। फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी। राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 आई तौकीर अहमद 0306-1623-793।
0: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
2: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियो ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 03-01-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इस्लामाबाद के पिमसाने की शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। अगोने सेक्रेटरी शाहिद खान शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा कराई। रिपोर्ट में रेस्क्यू इमदादी कमन दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। गैर हाजिर अमले खिलाफ कार्रवाई की भी सिफारिश थियल। पिम्स में इलाज ए सहूलत की कोर्ट जो भी जिक्र किया वो। साने जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करण की भी सिफारिश कई वही। जरियन जो चवण है रिपोर्ट पब्लिक करण जो इख्तियार वजीर आजम के दिनों वो है। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विवाद जो दौरो। जदीद हथियार के ट्रायल जो मुशाहिदो किया। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन मकामी सतह से तैयार जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग डी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कर जदीद हथियार के टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पान भरो थियण मकामी पैदावारी सलाहियतें टेक्निकल में जदीद जो अजम वरजायो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो। जाली कागजन से सफर कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमिग्रेशन काउंटर से भी कमकार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चयो तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुकाबले इंतजाम हुजण घुर्जे। इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। ईरान की इजाजत का सिवाय को भी जहाज आपना हरमुज में गुजरी न सकंदो। पाकिस्तान इंकलाब जो अमेरिकी सदर के आपना हरमुज खोलने वाले बयान से रद्द अमल। पाकिस्तान इंकलाब मूजिब अमेरिका नाकामियों लिकाण लाए पूरा बयान दे रो है। ईरान खिलाफ जेस तई अमेरिकी फौजी कार्रवाई खत्म न थन्दी तेस तई आपना हरमुज की मुदाखलत बर्दाश्त न कबी। अमेरिका वेंजुएला के 58 अरब बैरल का तेल के जखीर से कंट्रोल हासिल कर वरतो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो अमेरिका वेंजुएला से दुनिया की तारीख में तेल जो सब का वो मुआहदो है। उन मुआहदे से वेंजुएला के वही कामयाबी ए खुशहाली मिली है। अमेरिका वेंजुएला में लागापा मजबूत। सिंध में एचआईवी के बढ़ केसिस की शफाफ जांच लाए आजाद कमीशन जोड़ो वे। एमक्यूएम के आमिर सदीकी ठहराव सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के वलीका अस्पताल में सामू आयल एचआईवी केसिस की जांच जो मुतालबो। लागापे ऑफिसर के भी अहदे त हटाने की घुर। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कंदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुकुम। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर ने डॉक्टर समेत समूरो मानों की लिस्ट पेश करण की हिदायत। कमीशन गुजरियल डी थियल जांच के लिखत में हुकुम जारी कर छो। अदालती कमीशन है तो मीर रजा जो सब का पैं लाश डिसंदड़ नर्सरी मुलाजमन के भी नोटिस जारी किया वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज ए अहलकार भी पेश किया वे। कोट डिजी भरसा मीरवा कैनाल में बुढ़ी वेल चौथे बार जो भी लाश हथ आयो है। 36 कलाक बाद बुढ़ी वेल 12 वरन के मीर मोहम्मद जो लाश भी हथ किया। बी अग रक्षा ऊंधो थियण सबब चार लींगर मीरवा कैनाल में बुढ़ी वया हुआ। टिन लींगर जा लाश गुजरियल ॾींहं मिलिया हुआ। कराची की अदालत 8 साल के लींगरी हबीबा के गटर में किरी फोत थियण वे केस जो फैसलो बुधाए छो। कराची वार्ड बोर्ड के महीने अंदर लींगरी के वालदेन के 1.5 करोड़ रुपया मुआवजो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 साल की लींगरी हबीबा हॉक्स बे के शेर मोहम्मद गोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वही। मटियारी भरसा नायच ए खोसा बिरादरी के बिन धुरन में थियल झेड़े जो एक जख्मी फोत। झेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलिद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दिनों। खोसा नायच धुरन में मामूली गार थियल झेड़े में 5 जणा जख्मी थे। कुंबरी वेझो फसल के भेल तिन धुरन में झेड़ो कुआरियों ए लठू लगन सब 5 जणा जख्मी। गोड लखानोरन में फसल के भेल रिंद ए भील बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थे कुआरियों ए लठू सब भील बिरादरी जहा 5 जणा जख्मी थे। शादातपुर का भिक्षा ताई सूफिन जो सिंध इम्कानी विरांगे खिलाफ प्यादल मार्च शुरू। मांझी फकीर की क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन ए शहरन जो वडे अंग में शिरकत। अगवाणन चयो सिंध सूफिन ए वलिन की सरजमीन है। सिंध के विरहण वाली साजिश केर भी कबूल न कर। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालन की नर्सिंग या पैरा मेडिकल स्टाफ पारा अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करण खिलाफ रैली मुजाहरीन सिविल अस्पताल का प्रेस क्लब हैदराबाद तीन क्यादल मार्च कर एहतजाज किया। मुजाहरीन अस्पताल के पीपीएचआई हवाले करण वो फैसलो कबूल ना फैसलो वापस वो सखर में मंशियात के विकरे खिलाफ शहरों का एहतजाज मंशियात विको कर खिलाफ कार्रवाई के मुतालबो साइट एरिया थाने की हद अलाहाबाद कॉलोनी के रहवासन मंशियात के विकरे खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहरीन मौजूद पुलिस शिकायत बावजूद मंशियात फ्रोशन खिलाफ कार्रवाई न करे रही है। नओं देरो भरसा कच्चे इलाके में सिंधु दरिया जो पानी तेजी से जमीनों पान लगो बुढ़ा पतण वे हंध पानी जो दबाव बदण सबब सूरत हाल गणती जोगी पानी के तेज रेकर जमीन में खाद सबब गोट में कायम स्कूल लुड़ी वो मुतासिर गोठान जो हुकूमत का बुढ़ा पतण वे हंध हिफाजती पाव वो मुतालबो।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपुर एटमाद बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 0307 3592120।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0606-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: जिते ढोर इंसान जी खुशहाली जो जरियो आहिन, उते सुठी खुराक ढोरन जी जरूरत आहे।
5: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार, वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार। 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
6: न अदा?
8: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
8: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
7: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
9: 03013992836।
10: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385699।

खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पी आर

0: कने गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले

और बाकी तो ठीक है, आपको वेलकम कहते हैं। और उनके अलावा आसिम हमारे साथ हैं। आसिम कहते आप ही शिदो कैसी हो? आप ही शिदो बिल्कुल ठीक ठाक है। और गाना भूला है आपने भी, मैं गाना चलाने की कोशिश करूंगी। और लिखा है अपना प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते तो भाई किसी और को मशवरे क्यों देते हैं लोग। ये भी तो सोचे ना कि हर किसी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो जाहिर सी बात है ऐसी तो नहीं होती कि दूसरों की प्रॉब्लम है तो भाई चलो इजी ले लेते, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, ऐसा मत किया करे। और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई शो तुम्हारा जबरदस्त आए, थैंक यू वेरी मच हबीबुल्ला भाई। और हैं जी फहीम कहते हैं टॉपिक पता नहीं दादा आप बताएं, मैं तो बताऊंगी लेकिन आप भी तो थोड़ा सा बताएं ना। और जी चले बिल्कुल बताने और सुनने वाली जो बारी ना ये पूरे प्रोग्राम में ही कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमारे पास जो गाने हैं आप लोगों को सुनाने के लिए तो जरा हम वो गाने भी साथ साथ सुन लेते हैं। ये है जी एक अच्छा सा गाना और AI तो लिमिटेड था मतलब इंग्लिश और उर्दू गाने बनाने के लिए, लेकिन सिंधी गाने अब सिंधी गानों की तरफ भी आज के अब कैर नहीं सिंधी सिंगर्स का भी, तो चलिए ये गाना एंजॉय करते हैं। थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है लेकिन गाना अच्छा है, एंजॉय कर लेंगे। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं चलती गाना मस्ती, आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। आइए मिलकर ये प्यारा सा गाना एंजॉय करते हैं।

deu, Malamal? मैं सोच रही हूँ कौन है भाई. हाँ, चस कराने वाले तो गाने आजकल बन ही रहे हैं. बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सुपर कूल सा गाना है. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है. बिल्कुल, आपका साथ जो है वो प्रोग्राम ही हमारे साथ साथ है. और आप जो फेसबुक पर हमें सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. और इसी के साथ साथ टॉपिक को जरा फॉलो कीजिए. ये छो आ इंसान जो एतरो दोगलो छो हों आए इन ॻाल्हि जी मूंखे ख़बर ॾिनी न कोन पई आहे. पर तव्हां मूंखे ॿुधायो, जॾहिं तव्हां कंहिं ॿिए खे पंहिंजे मतिलबु कंहिं मसइले जो हल ॿुधाईंदा त तव्हां वटि मिंटो हुन मसइले जो हल अची वेंदो आहे. पर जॾहिं तव्हांजी पंहिंजी लाइफ में कोई प्रॉब्लम अची वेंदो आहे त तव्हां हुन प्रॉब्लम खे सॉल्व करण में एतिरो टाइम छो लॻाईंदा आहियो? पाण वटि बि तव्हां वटि हीअं चुटकी वॼाए बि हल अची वञे न, ईअं नाहे हूंदो. ॿियनि जे लाइ भई इंसान थोरो घटि सोचींदो आहे, ईअं न हुजणु घुरिजे. बिल्कुलु जी, तव्हां सां सॼो मौजूदु आहे.

चले समझ में थोड़ा भले कम ही आया, लेकिन गाने की वाइब बड़ी अच्छी थी, सुनकर बहुत अच्छा लगा और आपको भी यकीनन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये जो आपके गानों की फरमाइशें आती जा रही है ना, अच्छा ये सिर्फ मुझे ही लगता है कि जब मैं बोलती हूँ तो ऐसे तूफान तूफान सा फील होता है, ये मुझे ही लगता है या फिर आपको भी ऐसा महसूस होता है, मुझे बताएं जरा थोड़ा सा, ताकि मैं इस चीज को समझ जाऊं कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या फिर आपकी यहाँ भी आवाज ऐसी आती है कि ऐसा लगता है भाई सिद्रा जो है वो बात करे, लेकिन साथ साथ तूफान भी चल रहा है पीछे। आप बताइएगा। और इसी के साथ साथ एक और गाना हमारी लिस्ट में है, तो वो भी जरा हम लगा लेते हैं जी लिस्ट में। ये गाना होने वाला है बलोची गाना और बहुत ही ब्यूटीफुल है, इस गाने को भी सुनेंगे। फरमाइश है जी अखलाक भाई की, सो लेट्स एंजॉय।

भी चीज हूँ, गाना एंजॉय करिए और गाने के साथ साथ हम जरा जाने लगे हैं न्यूज ब्रेक की जाने, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए पूरे पूरे तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, जल्दी का नाम मस्ती, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: इलाज ए सहूलतन की कोर्ट जो भी जिक्र किया सान के जिम्मेवार खिलाफ तगड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश कई गई। जरिए चवण है रिपोर्ट पब्लिक करण जो इख्तियार वजीर आजम के दिनों वो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरों जदीद हथियार की ट्रायल जो मुशाहिदो कयो। एसपीआर मौजूद फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन से मकामी सतह से तैयार थन्दड़ जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कर जदीद हथियार की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पान भड़ो थियण मकामी पैदावारी सलाहियतन ए टेक्निक में जदीद जो अजम वरजायो। वफाकी घर वजीर मोहसिन नकवी जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो जाली कागजन से सफर कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमिग्रेशन काउंटर्स से भी कमकार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चवा तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुतबादल इंतजाम हुजण घुर्जे इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। ईरान की इजाजत का सवाए को भी जहाज आबना हरमुज में गुजरी न सो। पासदार इनकलाब जो अमेरिकी सदर के आबना हरमुज खोलने वाले बयान से रद्द अमल। पासदार इनकलाब मौजूद अमेरिका नाकामियों लिखाण लाए कूड़ा बयान दे रो है। ईरान खिलाफ जैस तीन अमेरिकी फौजी कार्रवाई खत्म न थन्दू तेस तीन आबना हरमुज में मुदाखलत बर्दाश्त न कबी। पीपल्स पार्टी पिमसाने की जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो कर छो। पीपल्स पार्टी सेनेटर परवेज शाह खान है तो पीपल्स थाने जो शाहिदू मटाने की कोशिश की रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब रुपया मिलिया रकम किथे खर्च थी ऑडिट कराई वे पिम्स थाने के लिखाण न दिनों वो
2: मतलब 5 साल की बची उसके साथ दूसरा प्यार किया
3: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
1: केपीके के वे वजीर सुहेल आफरीदी के हरिपुर में ज्यादती बाद कतल कल मासूम आयत नूर के घर आमद वालदेन सा दुख हमदर्दी जो इजहार। सुहेल आफरीदी नीगरी आयत नूर जो जिक्र कदे लुट लाड़े वेठो। आयत नूर के वालिद के मुकमल इंसाफ दियण की खातिरी भी कराई।
0: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 03201800003।
5: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385।
6: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
7: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
6: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
7: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000

0: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03008569
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: जानवरन जे डॉक्टर खां नालो वठी खरीद करियो। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सोम।

0: پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کے بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کے بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569 रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजह स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 0300-002-7234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301-386-5453
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है एनपीएस तीन की ताकत के साथ इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे जिससे हो पैदावार में इजाफा

0: और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा, तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: छिड़काईंदड़ निक्षा बलोचिस्तान के घर वजीर जिया लांगो है तो बलोच दहशतगर्द रिवायत के खत्म करने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तानी फितने वारा बारन के वर्गलाए आपघाती हमला करना चाहन था। उन्होंने बिन बारन के पांजे मकसद लाए इस्तेमाल किया। तंजीम से गड कम का इनकार करने दहशतगर्द सैफ खान के कत्ल किया। दहशतगर्द मकसद में कामयाब न थींदा। इस्लामाबाद के पिमसाने की शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। अगूणे सेक्रेटरी शाहिद खान शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम हाउस में जमा कराई। रिपोर्ट में सिक्योर रेस्क्यू ए इमदादी कमन दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। गैर हाजिर अमले खिलाफ कार्रवाई भी सिफारिश थियल। पिम्स इलाज में सहूलत की खोट जो भी जिक्र किया। साने के जिम्मेवार खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करने की भी सिफारिश कई वही। जरिए जो चवण है तो रिपोर्ट पब्लिक करने जो इख्तियार वजीर आजम के दिनों वो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वार जो दौरों जदीद हथियारों की ट्रायल जो मुशाहिदो कई वो। ISPR मूजिब फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन ए मकामी सतह से तैयार थन्दड़ जदीद हथियारों बाबत ब्रीफिंग डिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियारों की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण ए मकामी पैदावारी सलाहियत ए टेक्निक में जिदत जो अज़म वरजायो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची दौरो जाली कागजन से सफर कंदड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमिग्रेशन काउंटर से भी कम कार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी चे तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुतबादल इंतजाम होजन घुर्जे। इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे। पीपुल्स पार्टी पिमसाने की जांच रिपोर्ट पब्लिक करण जो मुतालबो कर छो। पीपुल्स पार्टी सेनेटर पलवशाह खान चाहिए तो पिमसाने जो शायदी मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब रुपया मिलिया रकम किथे खर्च थी ऑडिट कराई वे पिमसाने के लिकान न दिनों वो।
2: मतलब 5 साल की बच्ची उसके साथ दूसरा प्यार किया।
3: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
1: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सुहेल आफरीदी की अरमपुर में ज्यादती बद कतल कल मासूम आयत नूर के अहमद घर वालदेन से दुख ए हमदर्दी जो इजहार। सुहेल आफरीदी नींगरी आयत नूर जो जिक्र कंदे लुड़क लाड़े वेठो। आयत नूर के वालद के मुकम्मल इंसाफ दियण की खातरी भी कराई। सिंध में HIV के वधंदड़ केसेस के शाप जवाब लाए आजाद कमीशन जोड़ी वे। MKM के आमिर सिद्दीकी ठहरा सिंध असेंबली में जमा कराए छो। कराची के वलिका अस्पताल में सामू आयल HIV केसेस भी जांच जो मुतालबो। लागापियल आफिसर के उहदे तां हटाइण की घुर। कराची के वापारी मीर रज़ा केस की जांच कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करण जो हुक्म। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस आफिसर डॉक्टर समेत समूरन मानन जे फर्ज पेश करण जी हिदायत। कमीशन गुजरियल ॾींहुं थियल जांच जो लिखतनामो बि हुकुम जारी करे छॾियो। अदालती कमीशन चयो आहे त मीर रज़ा जो सभ खां पहिरियों लाश ॾिसंदड़ नर्सरी मुलाज़िम खे बि नोटिस जारी कयो वञे। पुलिस मोबाइल जे इंचार्ज अहलकार खे बि पेश कयो वञे। कोटड़ी जी भरसां मीरवा किनाल में ॿुॾी वियल चोथे ॿार जो लाश बेहथ। 36 कलाकनि बाद ॿुॾी वियल ॿारनि वरनि जे मीर मोहम्मद जो लाश बेहथ कयो वियो। ॿ ॾींहं अॻु रक्षा हूंदो थियण सबब 4 नींगर मीरवा किनाल में ॿुॾी विया। 3 नींगरनि जा लाश गुज़िरियल ॾींहुं मिलिया हुआ। कराचीअ जी अदालत 8 सालनि जी नींगरी हबीबा जे गटर में किरी फोत थियण वारे केस जो फ़ैसिलो ॿुधाए छॾियो। कराची वाटर बोर्ड खे महीने अंदरि नींगरीअ जे वालदेन खे 1.5 करोड़ रुपया मुआवज़ो अदा करण जो हुकुम। 2021 में 8 सालनि जी नीगरी हबीबा आक्स बे जे शेर मोहम्मद ॻोठ में खुलियल गटर में किरी फोत थी वई हुई। मटियारी भरसां पलीजाणी में नाइच ऐं खोसा बिरादरीअ जे बिंदरनि में थियल झेड़े जो हिकु ज़ख़्मी फोत। झेड़े दौरान ज़ख़्मी थियल मुबारक वलद हमज़ो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम ॾिनो। खोसा ऐं नाजदुरिन में मामूली ॻाल्हि तां थियल जेड़े में पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ। कुनरी वेझो फसल जे भेल तां ॿिनि धुरिन में जेड़ो कुहाड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सां पंज ॼणा ज़ख़्मी। ॻोठु लखनऊ रिंद में फसल जे भेल तां रिंद ऐं भील बिरादरीअ जे ॿिनि धुरिन में जेड़ो थियो। कुहाड़ियूं ऐं लठियूं लॻण सां भील बिरादरीअ जा पंज ॼणा ज़ख़्मी थिया। शहदादपुर खां भिटशाह ताईं सूफ़ियुनि जे सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ प्यादल मार्च जारी। मांझी फ़क़ीर जी क़यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफ़ियुनि ऐं शहरनि जो वॾो अंगु शरीक। अॻवाणनि चयो त सिंध सूफ़ियुनि ऐं वलियनि जी सरज़मीन आहे, सिंध खे विरहाइण वारी साज़िश केर बि क़बूल न कंदो। नबीसर रोड में बि सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ क़ौम परस्त अॻवाणनि ऐं शहरनि जी रैली। अॻवाणनि चयो त सिंध जी वहदत ते वार बर्दाश्त न कंदासीं, सिंध हिकु आहे ऐं रहंदी। हैदराबाद में सरकारी अस्पतालनि जे नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालनि खे पीपीए शा हवाले करण ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली मुज़ाहिरो। सिविल अस्पताल खां हैदराबाद प्रेस क्लब ताईं प्यादल मार्च करे एहतजाज कयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त अस्पतालनि खे पीपीए शा हवाले करण वारो फ़ैसिलो क़बूल न आहे, फ़ैसिलो वापसि वरितो वञे। फैज़गंज में बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि जो मेराण हाईवे ते धरणो। अकरी थाणे जे हद में चोरनि जा जवाबदार गिरफ़्तार न थियण ख़िलाफ़ करुंडी डिग्री कॉलेज वटि टायर सारे मेराण हाईवे ते धरणो हयो वियो। मुज़ाहिरनि चयो त घरनि मां थियल चोरी वापसि कराए तालके में अमन अमान बहाल करायो वञे। हैदराबाद जे लतीफ़ाबाद नंबर 6 में घर मां मुबैना तौरु 1 करोड़ खां वधीक चोरी। चोर मुबैना तौरु 1 करोड़ रोक सोन चांदी ऐं ॿिया ज़ेवर खणी फरार थी वियो। मुतासिर घरधणीअ चयो आहे त आउं ख़ानदान सां गॾु कराची वियल हुयुसि, पुठियां चोरी थी वई आहे। चोरी थियल सामान जी मजमू महिल तक़रीबन 1 करोड़ लख रुपियनि खां मथे आहे।
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: कॉलेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385-69।

मोहब्बत में सावल अबड़ो चए। खास फरमाश रहीम कोरार, मास्टर नूर मामन, मामद अली कोरार, अली हसन कोरार, शहर सखर का खमीसो लेगारी, अली हसन लेगारी, सदाम लेगारी, लुत्फ ला चन्नई खास फरमाश जो प्रकर दोस्त बचल शाह मियाणी का हनीफ मलिक की खास फरमाश, रफीक लेगारी फरमाश, उनजो फर्जंद सिकंदर लेगारी।

0: अरिजोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-120
2: अस्सलाम वालेकुम अदा
3: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
2: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
3: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
2: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
5: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं। इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: नया पामोलिव नेचुरल्स नाउ इन न्यू पैकेजिंग। पामोलिव नेचुरल्स न्यू लुक नेचुरल ग्लो।
2: इल्तवा के बाद जाहिर है जो बेस्ट मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
3: सो बेस्ट असा इन करे चाहियूं था त हर सिंध जो माण्हू जेको आहे हिन मामले ते ॻाल्हाईंदो। अहम मामिलो आहे, असां चाहियूं था त सिंध जा माण्हू ॿुधनि ऐं हुनजे असां टेक्निकली तौर ते
4: असांजी मंडीअ खां वठी वरी इन ते रेज़ोल्यूशन बि पास कंदासीं।
5: पीपल्स पार्टीअ पारां सिंध जे इम्कानी विरहाङे बाबति सिंध असेंबलीअ में बहस लाइ पेश कयल रिथ जो दिफ़ा। ऐवान मां विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि मंज़ूर कराइण जो ऐलान। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त सिंध असेंबली पहिरीं बि 6 भेरा ठहराउ पास करे चुकी आहे। रिथ आणण जो मक़सदु बि मामले ते ॻाल्हाइण आहे। मोहम्मद अली मलकाणी चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सदु मौक़िफ़ पेश करणु आहे। सिंध जे इम्कानी विरहाङे ख़िलाफ़ ठहराउ बि पास कयो वेंदो।

0: पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरन डिपार्टमेंट्स के सरबराहन के ओहदन ता हटायो वञे। पिम्स साने जी जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशूं वजीर आजम हवाले करे छडियूं। पिम्स साने जी शुरुआती जांच रिपोर्ट वजीर आजम के पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ए इमदादी कमन दौरान पेश आयल मसलन जो भी जिक्र। पिम्स में इलाज ए सहूलतुन जी खोट जो भी जिक्र कयो वयो। साने जी जिम्मेवारन खिलाफ तकड़ी कार्रवाई करण जी भी सिफारिश कई वई। जरियन मूजिब बिन्हीं जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ए नर्सरी के जिम्मेवार डॉक्टर्स ए नर्सिस के भी हटाने की तजवीज दिनी वही है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर के चार्ज छड़न की हिदायत। वजीर आजम लाहौर में अहम इजलास सदाए वरतो।
1: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
2: सर, के इंतजार आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इस पे?
1: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
2: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर दिया।
1: रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: रिपोर्ट इंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पैजी वेंदी। मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे। सेहत वार वफाकी वजीर मुस्तफ़ा कमाल। मुस्तफ़ा कमाल जो साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो। तारिक फजल चौधरी चयो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट अज सामू अची वेंदी।

पीपल्स पार्टी पिमसाने की जांच रिपोर्ट पदरी करने जो मुतालबो कर छोड़ो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवेशा खान तो सभी गठ जोड़ है शफाफ जांच कि लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नाने जो शायद मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों को इतराफ मुल्की निजाम के बेबिटे मयार वारो करार दे छोड़ो। तकरीब के खिताब कहते मुसद्दिक मलिक कें भी सियासतदान जो बार पिम्स में इलाज कर ना वन न ही कें सियासतदान जो बार सरकारी स्कूल में पढ़न था इन फर्क के खात्मे तक निजाम ठीक न थी।

मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बिटी सैकड़ों में घटजी सिंगल डिजिट ते पहुंती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यान तरक्की ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिताब कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार जो चवण हो तो व्याज की शरह भी 22 सैकड़ों में घट थी 11 सैकड़ों थी वही है। आम मानू की आमदनी में भी वाध थी है। खिते में भी पाकिस्तान अहम किरदार हासिल कर चुको है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरों जदीद हथियार के ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो वयो। आईएसपीआर मूजिब फील्ड मार्शल के इदारे की मुख्तलिफ़ शोबन ऑपरेशन्स मकामी सतह से तैयार थींदड़ जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग दिनी। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियार की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पाण भरो थियण मकामी पैदावारी सलाहियतुन टेक्निक में जिद्दत जो अज़म वरजायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंजीम बीएलए जो दहशतगर्दी वो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज आपघाती हमले लाए तैयार कल नंढे उम्र की बिन छोकरन के गिरफ्तार करे वरतो। निंगरन जा पाबंदी मड़ियल तंजीम बीएलए बाबत छिड़काइंदड़ इंकशाफ। बलोचिस्तान के घरू वजीर ज़िया लांगो है तो दहशतगर्द बलोच रवायतन के खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दन 16 साल की ज़ैनब ए 12 वरन की फातिमा के वरगलायो। 40 दिन ताई खेन बंद रखी आपघाती हमले लाए तैयार किया वो। निंगरन जा वालदीन भी हैरान आहन। ज़ैनब के मुड़स के दहशतगर्दन मारे इल्ज़ाम फोर्सेस से लगायो। फोर्सेस जो दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी आहन। दहशतगर्दन के खत्म कयो वेंदो। वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरों जाली कागजन ते सफर कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। घरू वजीर इमिग्रेशन काउंटर्स से भी कमकार जो जायजो वरतो। मोहसिन नकवी तो सिस्टम डाउन थियण की सूरत में मुतबादल इंतजाम होजन घुर्जे। इमिग्रेशन जो अमल बंद न थियण घुर्जे।

0: तरफ 5 साल की बच्ची, उसके साथ दूसरा प्यार किया जाता है।
1: इंशाल्लाह इनको सजा मिलेगी और आपको इंसाफ मिलेगा।
2: खैबर पख्तूनख्वा के वे वजीर सोहेल आफरीदे की हरिपुर में ज्यादती बात कतल कल मासूम आयत नूर के घर आमन वालदीन सा दुख है हमदर्दी का इजहार। सोहेल आफरीदी निगरी आयत नूर जो जिक्र कदे लुड़पलाड़े वेठो। आयत नूर के वालिद के मुकम्मल इंसाफ देने की खातरी। कराची के व्यापारी मीर रजा केस की जांच कदड़ अदालती कमीशन पारा केस जो समूरो रिकॉर्ड पेश करने जो हुक्म। केस से जुड़ियल समूरन पुलिस ऑफिसर डॉक्टर समेत समूरन मानून की फहरिस्त पेश करने की हिदायत। कमीशन गुजर ढी थे जांच जो लिखित में हुक्म जारी कर छोड़ो। अदालती कमीशन चयो है मीर रजा जो सब का पहरी लाश दिसंदड़ नर्सरी मुलाजमन के भी नोटिस जारी किया वे। पुलिस मोबाइल के इंचार्ज एहलकार भी पेश किया वे। कोटरी की वेझो मीरवा कैनाल में बुड़ी वेल चौथे बार जो लाश बेहद 36 कलाकन बाद बुड़ी वेल बारन वरन जे मीर मोहम्मद जो लाश हथ कयो वयो। बड़ी अग रक्षा उंदो थन सबब 4 नींगर मीरवा कैनाल में बुड़ी वया हुआ। 3 नींगरन जा लाश गुजरे दी मिल्या हुआ। मटियारी वेझो पलीजाणी में नाइच ए खोसा बिरादरी के बिन धुरन में थियल झेड़े जो एक जख्मी फौत। झेड़े दौरान जख्मी थियल मुबारक वलद हमजो खोसो सिविल अस्पताल हैदराबाद में दम दई छो। खोसा ए नाइच धुरन में मामूली गाल थियल झेड़े में 5 जणा जख्मी भी थी पाया हुआ। कुंडरी वेझो भी फसल के भेल तां बिन धुरन में झेड़ो कुहाड़ियों लठियों लगन सब 5 जणा मरणींग। गोठ लखा दिनो रिंद में फसल के भेल तां रिंद ए भील बिरादरी के बिन धुरन में झेड़ो थी पो। कुहाड़ियों लठियों लगन सब भील बिरादरी के 5 जणा जख्मी थी पाया अस्पताल मुंतकिल। शादादपुर का भिटशाह ताई सूफिन जो सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ प्यादल मार्च जारी। मांझी फकीर की क्यादत में निकतल प्यादल मार्च में सूफिन ए शहरन जो वडो अंग शरीक। अगवानन चयो तो सिंध सूफिन ए वलिन की सरजमीन है। सिंध के विरहण वाली साजिश केर भी कबूल न कंदो। नबीसर रोड में भी सिंध के इम्कानी विरांगे खिलाफ कॉम्परस्त अगवानन ए शहरन की रैली। अगवानन चयो तो सिंध की वहदत ते वाल बर्दाश्त न कंदासीं। सिंध एक है ए हमेशा एक रहंदी।

0: हैदराबाद में सरकारी अस्पतालनि जी नर्सिंग ऐं पैरामेडिकल स्टाफ पारां अस्पतालनि खे PPHI हवाले करण ख़िलाफ़ रैली।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 0320180003।
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301386543।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
4: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
5: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 0300320432 0242460100।

कॉलम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301 54 31 456 ऐं तौकीर अहमद 0306

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-33-85569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाई, आसिम हुसैन आराई, 0307-35-92120।
2: नूरे जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हा भाग भरी चंगो थो लगे, मा हाणे ही थो वठी अचा।
1: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
5: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार है, इसीलिए सोना लाया है NPS। तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। तीन की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
6: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर और सूमर ते सुबह 10 खां शाम 5 वगे ताई मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर और आचर ते बगैर फीस जे चेक।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो, मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन, 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जीए एफएम 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ऐवान मां विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह चयो आहे त सिंध असेंबली पहिरीं बि छह भेरा ठहराव पास करे चुकी आहे। रिथ आणण जो मक़सद बि मामले ते ॻाल्हाइण आहे। मोहम्मद अली मलकाणी चयो त नवनि सूबनि ते बहस जो मक़सदु मौक़िफ़ पेश करणु आहे। सिंध जे इम्कानी विरहांगे ख़िलाफ़ ठहराव बि पास कयो वेंदो। पिम्स जे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत समूरन डिपार्टमेंट्स जे सरबराहनि खे उहिदनि तां हटायो वञे। पिम्स थाने जी जांच कंदड़ कमेटी सिफारिशूं वज़ीर आज़म हवाले करे छॾियूं। पिम्स थाने जी शुरूआती जांच रिपोर्ट वज़ीर आज़म खे पेश। रिपोर्ट में रेस्क्यू ऐं इमदादी कमनि दौरान पेश आयल मसइलनि जो बि ज़िक्र। पिम्स में इलाज ऐं सहूलियतुनि जी खोट जो बि ज़िक्र कयो वियो। थाने जी ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ तकिड़ी कार्रवाई करण जी बि सिफारिश कई वई। ज़रियनि मूजिबि ॿिन्ही जॉइंट एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर्स ऐं नर्सरीअ जे ज़िमेवार डॉक्टर्स ऐं नर्सिस खे बि हटाइण जी तजवीज़ ॾिनी वई आहे। एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर इमरान सिकंदर खे चार्ज छॾण जी हिदायत करे छॾी। वज़ीर आज़म लाहौर में अहम इजलास सॾाए वरितो।
2: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
3: सर, के इंतजार आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इसमें?
2: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ।
3: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतलात है, आपने रिजाइन को कर दिया।
2: रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
1: रिपोर्ट इंदी तो सभी के एक्शन की भी खबर पैजी वेंदी। मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे। सेहत व रिफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साथी वजीर तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो कर। तारिक फजल चौधरी चयो त पिम्स थाने जी जांच रिपोर्ट अॼु साम्हूं अची वेंदी। पीपल्स पार्टी पिम्स थाने जी जांच रिपोर्ट पधरी करण जो मुतालबो करे छॾियो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपल्स पार्टी जे सेनेटर पलव शाह खान चयो त सभिनी जो गठजोड़ आहे। शफ़ाफ़ जांच कीअं थींदी? लॻे थो त नंढनि आफ़िसरनि मथां मलबो किरायो वेंदो, वॾनि आफ़िसरनि खे कुझु न थींदो। थाने जूं शाहिदियूं मटाइण जी कोशिश थी रही आहे। पिम्स खे टिन सालनि दौरान 22 अरब रुपया मिलिया आहिनि। पैसा किथे लॻा, कीअं ख़र्च थिया, ऑडिट कराई वञे। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दिक मलिक पारां पिम्स जे हवाले सां नाकामियुनि जो एतिराफ़। मुल्की निज़ाम खे बि मिटे मयार वारो करार ॾेई छॾियो। तकरीब खे ख़िताब कंदे मुसद्दिक मलिक चयो त कंहिं बि सियासतदान जा ॿार पिम्स में इलाज कराइण नथा वञनि, न ई कंहिं सियासतदान जा ॿार सरकारी स्कूलनि में पढ़नि था। हिन फ़र्क़ जे ख़ात्मे ताईं निज़ाम ठीकु न थींदो।

0: मुल्की मैशियत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बिटी है सैकड़ों में घटजी सिंगल डिजिट ते पहुंती आहे। मुआशी इस्तेहकाम बाद हुकूमत जो हाने ध्यान तरक्की ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के खिताब कंदे नायब वजीर आजम इसहाक डार जो चवण हो तो व्याज की शराब 22% में घट थी 11% थी वही है। आम मानू की आमदनी में भी वाद थी है। खिते में भी पाकिस्तान अहम किरदार हासिल कर चुको है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट जो दौरो जदीद हथियार के ट्रायल्स जो मुशाहिदो किया वो। आई एस पी आर मूजिब फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशनल और मकामी सतह से जदीद हथियार बाबत ब्रीफिंग दिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियार की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो कर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पान भरो थियण मकामी पैदावार सलाहतुन और टेक्निक में जिद्दत जो अजम वरचायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंजीम बीएलए जो दहशतगर्दी वो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज आपघाती हमले लाए तैयार कल नंढे उम्र के बिन छोकरन के गिरफ्तार करे वरतो।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई।
2: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
3: राबते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601000।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 03201800003।

0: कालम में मौजूद आहिन। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836।

0: गुजरी वञनि था, लेकिन पोइ उन्हनि जा साइड इफेक्ट्स बि एॾा सारा आहिनि जो ओ पेशेंट पोइ पछाड़ी में जेको आहे सो बर्दाश्त बि कोन करे सघंदो आहे उहा बीमारी। हेलिको बैक्टेरिया हिकिड़ो वायरस आहे जेके एच पैलोरी असां चवंदा आहियूं, ऐं मुख़्तलिफ़ काफ़ी दफ़ा असां हिन प्रोग्राम बि करे चुका आहियूं, ॻाल्हाए चुका आहियूं, ऐं ॻाल्हाइण जी ज़रूरत हूंदी आहे ॻाल्हाइण इन जे करे जो इहा बीमारी हींअर घणी वधी वई आहे, ऐं बार बार थियण जे करे जेको असां इहा हिकिड़ी अवेयरनेस ॾींदा आहियूं त अहिड़े क़िस्म जी जेकॾहिं तव्हांखे तकलीफ़ थिए थी त तव्हां उन में ग़लती न कयो, शुरू में तकलीफ़ जीअं थिए त जल्दी कंहिं मुस्तंद डॉक्टर वटि पहुचाए उन में ई एहतियात ई परहेज़ ज़रूरु कयो त जीअं तव्हांजी इहा तकलीफ़ अॻिते वधण खां बची वञे, ऐं उन में तव्हां कहिड़ो इलाजु कराए सघो था। अहिड़े तरीक़े सां हेलिको बैक्टेरिया जेके घणा ई मज़ाकनि हेलीकॉप्टर वारी बीमारी बि चवंदा आहिनि, इहा बिल्कुलु पोइ ईअं ई थींदो आहे जो मां ॿुधायमि त शुरू शुरू में पहिरां माण्हू खे जलन थींदी आहे, वरी इन जी ख़ासि निशानी इहा हूंदी आहे जीअं माण्हू मानी खाईंदो आहे त पेट में सूरु जेको आहे सो वधी वेंदो आहे, ऐं सूरु जॾहिं वधी वेंदो आहे पेट ते भर्ती बि रहंदी आहे ऐं गैस भरिजी वेंदी आहे, लेकिन थींदो ईअं आहे उहो उन अनंढी जेकी पंहिंजो आंडरो हूंदो आहे उन ते सोज़िश थी वेंदी आहे, उन ते ज़ख़्म थी वेंदो आहे, पोइ जॾहिं अॻिते हली इहे तकलीफ़ूं वधी वेंदियूं आहिनि त पोइ उहो सूरु वधी वेंदो आहे, ऐं त हर मानी खाइण खां पोइ मिसाल ॿिनि टिनि कलाकनि खां पोइ सूरु थी वेंदो आहे, ऐं त उल्टी बि अची वेंदी आहे घणनि खे दिलकची उल्टी, ऐं सूरु अॻिते हली इहा इते इन खे असां हल्को न वठंदासीं छो जो इहो मर्ज़ु अॻिते हली कैंसर में बि जेको जेको आहे सो मुफ़्त यानी हिकिड़ो मुंतक़िल थी सघे थो, बल्कि मुंतक़िल थी वेंदो आहे। इन जे करे इहा जॾहिं बि अहिड़े क़िस्म जूं इहे तकलीफ़ूं थियनि त ज़रूरु कंहिं डॉक्टर खे पंहिंजे मुरादो दवा हरगिज़ न खाइजे। इन जे लाइ एच पैलोरी हिकिड़ी स्टूल डी आर टेस्ट थींदी आहे या जेको आहे सो स्टूल जे हवाले सां यानी पाखाने जी हिकिड़ी टेस्ट थींदी आहे उहा बि माण्हू कराए सघे थो, त उन सां जेको आहे सो उन में एंटीजीन स्टूल डी आर जी मां ॻाल्हि कई त उन में यानी हिकिड़ी ख़बर पइजी वेंदी आहे त कहिड़ी तकलीफ़ आहे ऐं पोइ उहो वायरस आहे या न आहे। घणियूं ई आम टेस्टूं हिकिड़ियूं उन जूं निकिरी पियूं आहिनि अॼुकल्ह जेको आहे सो यानी के विया स्टिक ते चेक कराई ॿ यानी पॉज़िटिव आई त सम्झो त, लेकिन उन खां बहितर इहो हूंदो आहे त माण्हू सुठी जेको आहे सो जेके थोरी टेस्ट हूंदी आहे उहो माण्हू कराईंदो त उन में माण्हूअ जो डिफेंस थी सघे थो, ख़र्च बि हुनजो सजायो थी सघे थो। उन खां पोइ उन में परहेज़ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे ऐं ॻाढ़ो मिर्च बिल्कुलु जेको आहे सो मना हूंदी आहे, तरियल शयूं खटियूं शयूं वॾो गोश्त वग़ैरह इहे बिल्कुलु हरगिज़ न खाए। दलियो वग़ैरह माण्हू इस्तेमालु करे सघे थो, चांहि जो इस्तेमालु बिल्कुलु घटि करे सघे थो, थधियूं शयूं इस्तेमालु करे, ऐं बिल्कुलु प्रोग्राम असांजो जारी रहंदो। जी साईं, ऐसा सभु
1: तमामु वॾी महिरबानी सर, तव्हां हिकु बहितरीन मालूमात ॾिनी। डॉक्टर साहब, हर बार खमीस जुमे छंछर या आचर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथी क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे, बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिलु थी सघो था, जिन नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहब मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे पिते मसाने जी पथरी जो बग़ैर ऑपरेशन जे कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। संदनि जोड़नि गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक कन गलो पुराणलो नज़लो, निछूं मथे जो सूरु, अध मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज खंघु टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर हेपाटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, औरतुनि ऐं मर्दनि जे पुशीदा बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कंदा आहिनि। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। इन नंबर ते तव्हां कॉल करे कंहिं बि बीमारी बाबति ॼाण हासिलु करे सघो था। हिकु दफ़ो ॿीहर डॉक्टर साहिबु जो एड्रेस ऐं टाइम अमां खे ॿुधाईंदा हलंदासीं, लेकिन इन खां पहिरियां डॉक्टर साहिबु हिकु कॉल आहे उन जी तरफ़ हलंदासीं। अस्सलामु अलैकुम। अच्छा ठीकु आहे, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो, रेडियो ॿुधो।
0: जी साईं, बिल्कुलु गर्मी दाणा निकिरंदा रहंदा आहिनि, लेकिन इहो आहे त उर्हाकनि जी टाइप्स अलॻि हूंदी आहे। हिकु त जेको आहे सो तरियल शइ, खटी शइ या जेको सो अंब वग़ैरह खां खाइण खां परहेज़ कयो, ऐं मेट जो इस्तेमालु ज़रूरु कयो। मेट जेके आरायूं जंहिंखे चऊं या गर्मी दाणा बाहूबदा कन जे ॿाहिरां जेको आहे सो आहे, त उनखे अन इहो जेको मेट आहे, मेट जो इस्तेमालु करण सां मेट थधो हूंदो आहे, इन सां आराई या अहिड़े क़िस्म जा दाणा जेके आहिनि से ख़तमु थी वेंदा आहिनि, वरना बसूरत दीगर पोइ रूबरू बि ॾेखारे सघे थो। वॾी महिरबानी
1: डॉक्टर साहिबु। हर बार खमीस जुमे छंछरु आचर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटरा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। असांजे लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में गुर्दे, पित्ते, मसाने जी पथरी जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। कॉल जी तरफ़ हलंदासीं, ॾिसूं था कहिड़ा लाइन ते मौजूदु। अस्सलामु अलैकुम। जी दादा, छा पुछणु चाहींदा डॉक्टर साहिब खां?
2: सर, चमड़ी ते फुरड़ियूं वग़ैरह छॾनि ई न थियूं।
1: अच्छा, उमिरि घणी आहे?
2: उमिरि आहे 15 साल।
1: ठीकु आहे, रेडियो ॿुधो, डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाए थो। जी सर।
0: जी साईं, हीअ मौसम आहे ऐं चमड़ी ते जॾहिं जेके आरायूं या वरी क़िस्म जूं फुरड़ियूं या फुंसियूं थी वेंदियूं आहिनि, त इहो सम्झो रत जो बिगाड़ थी वेंदो आहे, रत में अंदरि गर्माइश थी वेंदी आहे, ऐं मैदे जे करे बि जेको आहे सो मैदे में गर्माइश हूंदी आहे, जंहिंजे करे बि थींदो आहे। बहरहाल हिन जे लाइ हिन मौसम में जेकॾहिं कंहिं बि दोस्त खे अहिड़े क़िस्म जूं फुरड़ियूं वग़ैरह निकिरनि थियूं, त पनीर जो इस्तेमालु तमामु बहितरु आहे। रोज़ाना राति जो 7-8 दाणा पनीर जा, 2 कारा मिर्च, 1 नंढड़ो फोटो ऐं 1 नंढड़ो टुकड़ो मिस्री जो पाणी में पिसाए रखो। सुबुह जो नेराणे उहो जेको आहे सो पाणी छाणे ऐं उहो पीअनि इनशाला ताला। अच्छा, इन खां इहो आहे त सुबुह जो पहिरां वेझी छॾनि ऐं पोइ उहो पाणी पीअनि, छो जो इहो पीउ ऐं पोइ वेझिड़ो न हूंदो आहे, ऐं घटि में घटि पीअण उन पाणी जे पीअण खां कलाक बाद में ई कुझु न कुझु वरी ॿियो खाइणो हूंदो आहे, छो जो हीअ कुझु अहिड़े क़िस्म जूं तिब जूं दवाऊं हूंदियूं आहिनि, जंहिंसां ही अहिड़े क़िस्म जा एहतियात तमामु ज़रूरी हूंदा आहिनि, ऐं इन सां गॾोगॾु अंब, चांवर, खटियूं शयूं इहे इस्तेमालु हरगिज़ न आहिनि। घणी थधियूं शयूं इस्तेमालु करणियूं, खीर जो इस्तेमालु कनि, इनशाला ताला काफ़ी सारो फ़ाइदो जेको आहे सो पइजी ईंदो, वरना फ़र्क़ु न पए त बरूबरु ॾेखारे छॾियो।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि, GFM 94 जे लाइव स्टूडियो में अव्हांखे प्रोग्राम नशर कयो पियो वञे। डॉक्टर साहिबु मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जा माहिर डॉक्टर आहिनि, जिन में संदनि, जोड़नि, गोॾनि जो सूरु, कुन रग जो सूरु, नक, कन, गलो, पुराणो नज़लो, निछूं, मथे जो सूरु, अधु मथे जो सूरु, नज़र जी कमज़ोरी, कन जो वहणु, कन जो सूरु, घटि ॿुधण में अचणु, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिलि जा मर्ज़, फालिज, खंघु, टीबी, मैदे जो सूरु, मैदे जी अल्सर, तिली जो वधणु, जिगर, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दनि जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरणियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु, ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारी जो इलाजु कंदा आहिनि। असांजे लाइव कॉल ऐं असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851।

दिली जो वधण, जिगर हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी ख़ारिश, फट फुरड़ियूं, ॿारनि में कद जो न वधणु ऐं औरतुनि ऐं मर्दनि जे पोशीदा बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कंदा आहिनि। आयो असांजे प्रोग्राम में लाइव कॉल ज़रिए शामिल थी सघो था। लाइव कॉल जो नंबर आहे 0301-2196-851, 0301-2196-851। डॉक्टर साहब हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण पोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड में मैरापुर में मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। ऐं अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे। इन में हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो छंछर आचर चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तां वठणी हूंदी आहे। डॉक्टर साहब जो कॉन्टेक्ट नंबर आहे 0301-2196-851। हिन ते कॉल करे कंहिं बि वक़्तु डॉक्टर साहब खां का बि इंफॉर्मेशन वठी सघो था।

0: सिंथेटिक में क्रीम्स वग़ैरह हूंदियूं आहिनि, जेके उन जे इस्तेमालु करण सां पंहिंजो कुदरती रंग या उन में बहितरी जेको आहे सो अची सघे थी सिर्फ़ु उन सां। उन खां अलावा फ्रूट्स जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु आहे, जूसिस जो इस्तेमालु, पाणी जो इस्तेमालु ज़्यादा करणु तमामु ज़रूरी हूंदो आहे। जी साईं, हलूं था मौज़ू जे तरफ़। त ॾिसो, हिकिड़ी ॻाल्हि कईसीं मलेरिया जी, ॿियो टाइफाइड। टाइफाइड बि हिन मौसम में जेको आहे सो आम हूंदो आहे। इन जे करे टाइफाइड खां बचण जे लाइ तव्हां पंहिंजा जेके बि खाधो खाईंदा आहियो बर्तन ढके रखो, त पैदा जीअं उन ते मख, जेको मख ॾिसो कहिड़ी बि गंदगी ते वेही करे जॾहिं अव्हां जे खाधे ते वेंदी त उहो जरासीम उन में विझी वेंदी आहे, जंहिं खां पोइ तव्हांखे जेको आहे सो टाइफाइड थी सघे थो। उन खां पोइ हींअर जंहिंजी थोरी घणी केॾी महिल राति जो थधि पए वेई थी या केॾी महिल हवायूं लॻनि थियूं, त उन सां एलर्जी, ज़ुकाम, नज़लो, खांसी, गले जूं ख़राबियूं, हिन वक़्तु गले जो वायरस बि आम थी पियो आहे। गले जी वरी ख़राबी थी सघे थी, जंहिंजे करे अव्हांखे तकलीफ़ में अची सघो था। इन जे करे उन जे लाइ एहतियाती तदाबीर इहो हूंदो आहे, जेकॾहिं कंहिंखे बि अहिड़े क़िस्म जी तकलीफ़ थिए थी, राति जे टाइम में पाणी गरम करे उन में हेड विझी या लूणु विझी या जाण विझी उन जा घराड़ा ज़रूरु करे। घराड़ा करण सां छा थींदो आहे, जेको वायरस वग़ैरह हूंदो आहे उहो उन महिल ई जेको आहे सो उतां रफ़ा थी वेंदो आहे, ख़तमु थी वेंदो आहे। पाणी गरम करे उन में लूणु विझी उन जा घराड़ा करणु तमामु ज़रूरी आहे। उन सां नकु साफ़ु करणु तमामु ज़रूरी आहे, या उन गरम पाणी जी बाफ़ तमामु ज़रूरी हूंदी आहे। अदरक तमामु हिकिड़ी बहितरीन जेको आहे सो शइ आहे, उहा इस्तेमालु करण सां चांहि में तव्हां अदरक जो टुकड़ो विझी ऐं उहा चांहि काढ़े ऐं उहा चांहि पीअण सां छा थींदो आहे, जेके बि जिस्म में तव्हांजे में अहिड़े क़िस्म जो एलर्जी अची वञे थी, कंहिंखे नज़लो आहे, ज़ुकाम आहे, खांसी आहे, या गले जो वर्म आहे, गले जी सोज़िश आहे, उहा अव्हांजी ख़तमु थी वेंदी आहे। इहे हिकिड़ी कुदरती अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंजो को बि नुक़सानु कोन्हे, को बि साइड इफ़ेक्ट कोन्हे, को न वरी को एॾो वॾो ख़र्चो आहे। इहे तव्हां इस्तेमालु करण सां काफ़ी मर्ज़नि खां, काफ़ी तकलीफ़ुनि खां तव्हां बची सघो था। अहिड़े तरीक़े सां तूतस्या शरबत तव्हांखे शहर में आम मिली वेंदो आहे, उहो गले जे लाइ तमामु मुफ़ीद हूंदो आहे। मिठी काठी, जंहिंखे मुलेठी चवंदी आहिनि, मुलेठी जेको आहे सो तमामु बहितरीन आहे। उनखे धोई करे चूसण सां बि गले जो वायरस जेको आहे सो ख़तमु थी वेंदो आहे। पान जी जड़ उन जे लाइ तमामु जेको आहे सो बहितरीन आहे। अच्छा, असां हिन मौसम में ॾिसो गर्मी आहे, पोइ यक थधो पाणी पीअंदा आहियूं। यक थधो पाणी पीअणु इंतिहाई नुक़सानकारु आहे। इन जे करे पाणी हमेशह वैसे बि नॉर्मल सजर पाणी पीअणु घुरिजे, न त थोरो मामूली उनखे थधो करे उहो पाणी पीअण सां अवां तकलीफ़ुनि खां बची सघो था। सो नंढियूं नंढियूं इहे शयूं आहिनि जेके तव्हां एहतियात करे पाण खे बचाए सघो था हिन मौसम में जेको आहे सो। नंढनि ॿारनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिबो आहे, जेके बुज़ुर्ग हज़रात आहिनि उन्हनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिणो हूंदो आहे। सो अहिड़ी अहिड़ी शयुनि खां तव्हां परहेज़ कंदो, पासो कंदो, तव्हां बिल्कुलु पाण खे बचाए सघो था। ऐं इन हिन वक़्तु इहा मौसम जेको आहे सो आहे, जंहिंसां तव्हांखे इहे तकलीफ़ूं थी सघनि थियूं, इन तकलीफ़ुनि खां बचाइण जा इहे ई इक़दाम आहिनि। जी अहसन भाई,
1: तमामु बहितरीन सर, हिकु बहितरीन ॼाण ॾिनी तव्हां,
0: महिरबानी।
1: प्रोग्राम आहे सेज ॻाल्हि ऐं असांजे स्टूडियो में मौजूदु डॉक्टर मंज़ूर हुसैन महमूद साहबु। डॉक्टर मंज़ूर हुसैन साहबु हर अरबा, ख़मीस, जुमे, छंछर, आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधनपोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी रोड मेरापुर में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि। ऐं नोट, अंगारे जे ॾींहुं क्लिनिक बंदि हूंदी आहे ऐं हिन में स्पेशली हफ़्ते जा 3 ॾींहं जुमो, छंछरु, आचरु चेकअप फीस बिल्कुलु फ्री हूंदी आहे। बाक़ी दवा मरीज़ खे स्टोर तव्हां वठणी हूंदी आहे। ऐं कॉन्टेक्ट नंबर आहे या लाइव कॉल ज़रिए तव्हां शामिलु थी सघो था प्रोग्राम में, 0301-9196-8051। 0301-219-6851।

0: जी इन्फॉर्मेशन आए, लेट सपोज कुछ फिशिंग जेके कन था पया पो
1: जी
0: कॉल कंदा आहिनि, इवन उन्हनि खे हर शइ ख़बर हूंदी आहे, नालो ॿुधाईंदा आहिनि, एड्रेस ॿुधाईंदा आहिनि, इन वटि इहा इंफॉर्मेशन कीअं थी पुॼे, किथां पिया खणनि, इहे किथे असांजी ग़लतियूं आहिनि जिते असांजो डेटा उते करे पिया छॾियूं, इनपुट कयूं पिया ऐं उतां उहे इंफॉर्मेशन ईज़ीली खणी उहा फिशिंग कनि था पिया।
1: सर असल में असां वटि हिकिड़ो ॾिसो गुरबत जो हिकिड़ो असां वटि सॼे पाकिस्तान में कंहिंखां लिकियलु आहे, सॼे पाकिस्तान में असां लाइ इशू आहे। असांजा जेके कॉल सेंटर्स आहिनि, असांजो सॼो डेटा उन्हनि वटि आहे। उहो छा आहे, उन कॉल सेंटर्स खे आहे असांजा बैंक लिंक्डइन।

0: वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-8151।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69।

0: माण्हू जे दिमाग़ में
1: पैनिक
0: क्रिएट करणु, वरी मुख़्तलिफ़ इदारनि जा नाला खणण के असां हिन इदारनि मां पैनिक माण्हू जे दिमाग़ में जॾहिं पैनिक क्रिएट थींदो आहे, माण्हू पंहिंजे हार
1: मञी करे
0: कंप्रोमाइज़, बाबर साहब कंप्रोमाइज़ न आहे करिणो, कंप्रोमाइज़ तव्हां कंदो तव्हांजो सॼो डेटा हली वेंदो ऐं उहो अल्टीमेटली तव्हांखे नुक़सानु आहे। मां हुनखे चयमि बाबा तव्हां ब्लॉक करे छॾियो, चई साईं असां FIA में आहियूं, ब्लॉक कंदासीं, मां अचां थो विज़िट करण थो अचां, अदर मुंहिंजो पाण नंबर बंदि कयो आहे, मां कॉल करण कोशिशि कयमि त उहो नंबर ई न पियो लॻे।
1: इहो
0: हिकिड़ो इशू हूंदो आहे की जस्ट दे केन कॉल अस, असां हुन नंबरनि ते कॉल
1: नथा कयूं,
0: छो करे उहो मालवेयर हिकिड़ो सॉफ्टवेयर यूज़ कंदा
1: आहिनि,
0: उहो तव्हांखे फोन करे तव्हां खां डेटा वठी था सघनि, तव्हां हुनखे फोन नथा करे सघो।
1: ओके, ऐं सर जीअं डेटा ते ॻाल्हि आई तव्हां चयो त को बि पिनकोड असांखे शेयर न करणु घुरिजे एज़ वेल, ऐं हीउ जेको स्पूफिंग थिए पई व्हाट्सएप अकाउंट जेके हैक थियनि पिया, त इन ते तव्हां इहा सजेशन ॾींदव त मिसाल को मैसेज अचे पियो कंहिं बि ऑथेंटिक नंबर तां खां, छाकाणि त असांजा दोस्तनि जा अगरि अकाउंट हैक पिया थी वञनि, उन्हनि खां मैसेज आयो असां त इहो सम्झंदासीं उन्हनि मैसेज मोकिलियो आहे, त असां उन्हनि खे इहो चई सघूं था यार वॉइस नोट खणी मोकिल, त वॉइस नोट त मां सम्झा थो इहे न करे सघंदा हूंदा जेके
0: फ्रॉडुलेंट आहिनि, उन्हनि खे चओ तव्हां वॉइस नोट करे मोकिलियो, जां तव्हां कॉल कयो हो कॉल खणंदो न,
1: कॉल न खणंदा एग्ज़ैक्टली,
0: अगरि तव्हां को दोस्त घुरे थो प्रीं प्यारो तव्हां में हुजत थो करे, हुजाए त दोस्त में तव्हांजी एतिरी हुजत हुजणु खपे, तव्हां फोन कयो बाबा मां अची थो वञा पाण जेको हाल आहे,
1: मैं अभी कॉल पे बात नहीं कर सकती। सो बिल्कुल व्यूअर्स, तव्हांखे जेको आहे मुहतात रहणु घुरिजे, एडवोकेट बिलावल हुसैन बलोच साहिबु तमामु सुठा अव्हांखे जेके आहिनि त मशवरा ॾेई रहिया आहिनि, जेके अव्हांजे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि, ऐं साइबर क्राइम खे जेको आहे त ईअं ई रोके सघिजे थो जेसि ताईं असां केयरफुल रहूं ऐं पंहिंजो डेटा जेको आहे स्पेशली उहो करे ॾियूं। सर कॾहिं कॾहिं ईअं बि थींदो आहे त अॼुकल्ह व्हाट्सएप ते जेको आहे न CNIC जी कॉपीज़ असां शेयर करे छॾींदा आहियूं, ऐं इन जो मिसयूज़ थिए पियो, इन खे कीअं पिया ॾिसो ऐं इन ते तव्हां छा असांजे व्यूअर्स खे सलाह ॾींदव?
0: सर इन ॻाल्हि में हिकिड़ो क्रेडिट असां गवर्नमेंट खे ॾियूं की असांजो जेको बि हाणे ट्रांज़ेक्शन मोड आहे उहो जेसि ताईं बायोमेट्रिक नथी थिए नथो थिए,
1: ओके,
0: न त पहिरों तव्हांजे NIC ते मां तव्हांजे NIC ते रजिस्ट्रेशन बि कराए पियो सघां, तव्हांजे NIC सां मां गाॾी बि रजिस्टर कराए पियो सघां, हाणे तव्हां ॾिसो छॾो जेको एक्साइज डिपार्टमेंट आहे सिंध जो, मूं वटि अगरि गाॾी आहे मां तव्हां सां तेसि ताईं ट्रांसफर नथो करे सघां जेसि ताईं मां बायोमेट्रिक नथो
1: करां,
0: थ्रू विच दिस CNIC कैन बी not used for any fraudulent.
1: All right. Matlab send kare ta sagan CNIC. It's okay. So short commercial break da halon pya podcast legal corner mein asan sa gat rahe jo.

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पीपल्स पार्टी पिम्स साने की जांच रिपोर्ट पधरी करण जो मुतालबो कर छोड़ो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलविशा खान चयो तो सभी जो गठ जोड़ है शफाफ जांच किनी थी लगे तो नंढन ऑफिसरन मथा मलबो किरायो वेंदो वडन ऑफिसरन के कुछ न थींदो साने जो शायदियों मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया आहिन पैसा किथे लगा किन खर्च थे ऑडिट कराई वे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पम्प्स के हवाले से नाकामियों को एतराफ़ मुल्की निज़ाम के भी बिटे मयार वारो करार दे छो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज करण नथा वन नई कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूलन में पढ़न था इन फर्क के खात्मे तय निज़ाम ठीक न थींदो।
2: ये तहरीके इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इसमें आकर हो गए। ये इल्तफा के बाद जाहिर है तो बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
3: सो बहस असा इन करे चाहूं था तो हर सिंध जो मानो जो है इन मामले से गालाइंदो वो अहम मामलो है असा चाहूं था सिंध जा मानो बुधन है उनजे असा टेक्निकली तौर पे असा जी मंडे को उठी वरी इन ते रेजोल्यूशन दी पास करदा से।
1: पीपल्स पार्टी पारा नवन सूबन यूनिट्स से बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रथ जो दिफाओ ऐवान में विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर शाह चयो तो सिंध असेंबली पहरी बे छह भेरा ठहराव पास कर चुकी है रिथ आणन जो मकसद भी मामले से गालण है। मोहम्मद अली मलकानी चयो तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौकिफ पेश करना है सिंध के इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वो।

मुल्की मैशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि टीह सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त व्याज जी शरह बि 22% मां घटि थी 11% थी वई। आम माण्हूअ जी आमदनी में बि वाधि थी आहे। ख़िते में बि पाकिस्तान अहम किरदारु हासिलु करे चुको आहे।

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो जदीद हथियारों की ट्रायल्स जो मुशाहिदो किया वो एस पी आर मूजिब फील्ड मार्शल के इदारे के मुख्तलिफ शोबन ऑपरेशन से मकामी सतह से तैयार थन्दड़ जदीद हथियारों बाबत ब्रीफिंग डिनी वही। फील्ड मार्शल मकामी तौर से तैयार कल जदीद हथियारों की टेस्ट ट्रायल जो भी मुशाहिदो किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफाई शोबे में पान भरो थियण मकामी पैदावार सलाहितों ने टेक्निक में जिद्दत जो भी अजम वरचाय। बलोचिस्तान में पाबंदी मरियल तनसीम बीएलए जो दहशतगर्दी वो मनसूबो नाकाम सिक्योरिटी फोर्सेस आपघाती हमले लाए तैयार कल नंढे उम्र के बिन छोकर के गिरफ्तार करे वरतो। निगरन जा पाबंदी मरियल तनसीम बीएलए बाबत छिड़काइंदड़ इंकशाफ। बलोचिस्तान के घरू वजीर ज़िया लांगो है तो दहशतगर्द बलोच रिवायतों के खत्म करने की कोशिश कर रहा है। दहशतगर्दन 16 साल की ज़ैनब ए 12 साल की फातिमा के वरगलायो। निगरन जा वालदीन भी हैरान हैं। ज़ैनब के मुड़स के दहशतगर्दन मारे इल्ज़ाम फोर्सेस से लगाया। फोर्सेस जो दहशतगर्दन खिलाफ कार्रवाई जारी है। दहशतगर्दन के खत्म किया वो। वडे वजीर मुराद अली शाह कराची के सेफ अस्पताल में कॉर्डिक विंग जो इफ्तिताह करे छो। तकरीब में नाणे वो फाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब भी शरीक थो। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब चयो तो कराची रोशनी उम्मीद इसलाहतुन जो शहर है। मौशी इस्तेकाम जो समर भी अवाम तक पहुंचाया वो। वडे वजीर चयो तो सेफी अस्पताल जो दिलवारो वार्ड सिंध समेत समूरे मुल्क के मरीजन के लाभ डी। बोहरी बिरादरी जोनी फलाही खिदमतू सराह जोगियो।

0: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जो जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची जो दौरो जाली कागजन ते सफर कंदड़न खिलाफ
1: गैल्टेक्स हैवलीन पैसेंजर कार मोटर ऑयल खरीद के जीतो गारंटीड मैकडॉनल्ड्स वाउचर और पाओ मौका ग्रैंड प्राइज जीतने का। मोटरसाइकिल ऑयल खरीदने पर भी गैल्टेक्स हैवलीन दे रहा है ढेरों एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका। गैल्टेक्स हैवलीन से सब जीतेंगे।
0: आई वर्क फॉर सिंध सिंध के नौजवान लाइ एक मुकम्मल डिजिटल केयर इकोसिस्टम बन चुको है जिते नौजवान के रोजगार जा मौका जदीद कोर्स मुख्तलिफ सहूलतू फराम कर पन। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीद मेमन आई वर्क फॉर सिंध तीन 4,45,000 का नौकरियों की दरख्वास्तू गड थी। सिंध हुकूमत जो मकसद नौजवान के रुगो नौकरी गोल्ड न पर नौकरी लाइ तैयार करना है।

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम बहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03005569
3: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 03000027234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
4: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आहिन
4: हाने यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
5: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 आई 02424601000
6: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर असां वट जगह जो जारियूं जगह जा पावा आई पाइप डेढ ब चार छह नव आई बारह इंच में प्लेन आई कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाइरन लाइ खुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 03014541456 तौकीर अहमद 03016023793

खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460-1000

0: सुनी अज त डाढी खुश थी लगे।
1: हां साईं गाल भी एड़ी आहे।
0: भला मुखे भी बुधाए केड़ी गाल आहे।
1: चाचे जुम्मन जी खुशहाली जो राज खबर पयो आहे।
0: छा छा?
1: उहे पेंजे ढोरन के जी जान सखर चारो मसालो पिया खाराइन। ही चारो ढोरन जो हाजमो दुरुस्त करे थो। ढोर सेहतमंद थेन ता गोश्त सा गडो गड खीर भी वधे थो।
0: वाह सुनी वाह वाह जी गाल बुधाई। पर किथे मिलंदो यो जी जान सखर चारो मसालो?
1: साईं रेडीए थे ता बुधाइन बुध अजी वठी अच।
0: मां हाणे ई थो वञा त जीअं असीं बि खीर वधायूं ऐं नोट कमायूं।
1: हा साईं हा।
2: जी जान चारो मसालो हर वेझे पंसार स्टोर ऐं जानवरनि जे डॉक्टर खां नालो वठी ख़रीद करियो।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा
5: यार, आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ अदा, कारोबारी इश्तेहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8743।
6: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

रिपोर्ट ते अहम हिदायतूं जारी करे छॾियूं। ज़िमेवार करार ॾिनल एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर समेत 8 आफ़िसरनि खे मुअतल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अमलदारनि फ़ौजदारी कानून तहत बि कार्रवाई जो हुकुम। जांच रिपोर्ट अवाम लाइ पब्लिक करण जी हिदायत। एडी पम्प्स डॉक्टर इमरान सिकंदर, मुताहिर शाह, डॉक्टर अवेस अली शाह, डॉक्टर सादिया रियाज, सीनियर रजिस्ट्रार डॉक्टर नौशीना अमजद, असिस्टेंट डायरेक्टर पिम्स सिक्योरिटी मोहम्मद उस्मान, डीजी इमरजेंसी सर्विस CDA डॉक्टर अब्दुल रहमान खे बि उहिदे तां हटायो वियो। जांच रिपोर्ट में ज़िमेवार करार ॾिनल आफ़िसरनि ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई बि थींदी।

0: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा, सारे रिपोर्ट
1: सर, के आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इस पर?
0: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
1: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतला है, आपने रिजाइन कर दिया?
0: वो रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
2: मुझे इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पूछो वे सेहत व वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल तारिक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरों कर तारिक फजल चौधरी चो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट में सामू इंदड़ खिलाफ कार्रवाई थी। पीपल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पदरी करण जो मुतालबो कर छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवेशा खान चो तो सभी जो गठजोड़ है, शफाफ जांच किनी थींदी, लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरायो वेंदो, वडन ऑफिसर के कुछ न थींदो, साने जो शायदू मिटाने की कोशिश थी रही है। पिम्स के टिन साल दौरान 22 अरब मिलिया आहिन, पैसा किथे लगा, किन खर्च थिया, ऑडिट कराई वे।
3: आपको हैरत नहीं हुई कि एक डॉक्टर की उंगली नहीं कटी, कोई नर्स जख्मी नहीं हुई, कोई फायरमैन को आग नहीं लगी और 14 बच्चे जल के राख हो गए? क्या सर्विस डिलीवरी भाई, क्या सर्विस डिलीवरी हुई? कहां थे ये तमाम लोग? ये तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स अब होगा, और ये फिक्स होगा तो बाकी गुफ्तगू होगी, इसे फिक्स किए बगैर अब कोई गुफ्तगू नहीं।
2: वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामियों को एतराफ, मुल्की निजाम के बेबिटे मयार वालों करार दे छो। तकरीब के खिताब कदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज कराने नथा वन, नहीं कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूलन में पढ़न था, इन फर्क के खात्मे ताई निजाम ठीक न थींदो।
4: ये तहरीके इल्तफा इस वजह से है कि भाई सब इसमें आकर हो गए, ये इल्तफा के बाद जाहिर है जब बहस मुबासा होगा और फिर ये बात आगे चलेगी।
5: सो बहस अस इन कर चाहूं था तो हर सिंध जो मानो जो है इन मामले से गालो अहम मामलो है, अस चाहूं था सिंध जा मानो बुधन है उनके अस टेक्निकली तौर पर असि मंडे को वी वरी इन रेजोल्यूशन भी पास कंदे।
2: पीपुल्स पार्टी पारा नवन सूबन यूनिटन ते बहस लाए सिंध असेंबली में पेश कल रिथ जो दिफा ऐवान में विरहांगे खिलाफ ठहराव भी मंजूर कराने जो ऐलान। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह है सिंध असेंबली पहरी बे छह भेरा ठहराव पास कर चुकी है, रिथ आणन जो मकसद भी मामले से गल है। मोहम्मद अली मलकानी तो नवन सूबन से बहस जो मकसद मौकफ पेश कर सिंध की इम्कानी विरहांगे खिलाफ ठहराव भी पास किया वो।

मुल्की मैशत मुस्तहकम थी चुकी आहे। महांगाई बि 30 सैकड़ो मां घटिजी सिंगल डिजिट ते पहुती आहे। मुआशी इस्तहकाम बाद हुकूमत जो हाणे ध्यानु तरक़ीअ ते आहे। लंडन में पाकिस्तानी कम्युनिटी खे ख़िताब कंदे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त व्याज जी शरह बि 22 सैकड़ो मां घटि थी 11 सैकड़ो थी वई आहे। आम माण्हूअ जी आमदनीअ में बि वाध थी आहे। खिते में बि पाकिस्तान अहम किरदारु हासिलु करे चुको आहे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री वाह जो दौरो, जदीद हथियारनि जे ट्रायल्स जो मुशाहिदो कयो। ISPR मूजिबि फील्ड मार्शल खे इदारे जे मुख़्तलिफ़ शोबनि, ऑपरेशन्स ऐं मक़ामी सतह ते तयारु थींदड़ जदीद हथियारनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। फील्ड मार्शल मक़ामी तौर ते तयारु कयल जदीद हथियारनि जी टेस्ट ट्रायल जो बि मुशाहिदो कयो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दिफ़ाई शोबे में पाण भरो थियणु, मक़ामी पैदावारी सलाहियतुनि ऐं टेक्निक में जिदत जो अज़म वरिजायो। बलोचिस्तान में पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA जो दहशतगर्दीअ वारो मनसूबो नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सिस आबघाती हमले लाइ तयारु कयल नंढी उमिरि जी ॿिनि छोकिरियुनि खे गिरफ़्तार करे वरितो। निगरनि जा पाबंदी मड़ियल तंज़ीम BLA बाबति छिरकाईंदड़ इंकशाफ़। बलोचिस्तान जे घरू वज़ीर दयाल लांगो चयो त दहशतगर्द बलोच रवायतुनि खे ख़तमु करण जी कोशिश करे रहिया आहिनि। दहशतगर्दनि 16 सालनि जी ज़ैनब ऐं 12 वरनि जी फातिमा खे वरगलायो। निगरनि जा वालदीन बि हैरान आहिनि। ज़ैनब जे मुड़ुस खे दहशतगर्दनि मारे इल्ज़ाम फोर्सिस ते लॻायो। फोर्सिस जूं दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी आहिनि।

0: वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह कराची जे सेफ़ी इस्पताल में कॉर्डिक विंग जो इफ़्तिताह करे छॾियो। तकरीब में नाणे वारो वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब बि शरीक थियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त कराची रोशनियुनि, उमेद ऐं सलाहियतुनि जो शहर आहे। मुआशी इस्तेहकाम जो समर बि अवाम ताईं पहुचायो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो त सेफ़ी इस्पताल जो दिलि वारो वार्ड सिंध समेत समूरे मुल्क जे मरीज़नि खे लाभ ॾींदो। बोहरी बिरादरीअ जूं फिलाही ख़िदमतूं साराह जोगियूं आहिनि। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जो जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराचीअ जो दौरो। जाली कागज़नि ते सफ़र कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई जी हिदायत। घरू वज़ीर इमिग्रेशन काउंटर्स ते बि कमकार जो जाइज़ो वरितो। मोहसिन नक़वी चयो
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 ऐं 02424601000।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर। एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर। राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 03073592120।

प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौक़ीर अहमद 0306

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर से सुबह 10 AM to 5 PM ताईं मरीजन जो इलाज कंदा आहिन। हर जुमे छंछर आचर से बगैर फीस के चेकअप कयो वेंदो। याद रखंदा मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी। माहिरे अमराज नक, कन, गलो, पुरानो नज़लो, निछो, मथे जो सूर, नजर जी कमजोरी, कन जो वण, कन जो सूर, घट बुधण में अचण, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल जा मर्ज, फालिज, खंघ, टीबी, मादे जी अल्सर, मादे जी जलन, दिली जो वधण, जिगर जा मर्ज, हेपेटाइटिस बी सी, गुर्दे जी पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन के कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे की खारिश, फट, फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन औरतन में वजन जो न वधण, उन सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राबते लाए 03001-2196-851।
0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: जा पीओ रेडियो ते चारे मसाले जो बुधाइन पया, भला इहो त बुध आई वठी अच।
3: जीजा ढोर चारो मसालो हाजमेदार वधाए खीर ए गोश्त जी पैदावार 50 सालन खा आजमायल सखरवारन जो जीजा ढोर चारो मसालो हर पंसार ए जानवरन जे डॉक्टरन खा नालो वठी तलब कंदा।
4: हां भाग भरी चंगो थो लगे, मां हाणे ही थो वठी अचा।
5: जी जान चारो मसालो हर वेजे पंसार स्टोर ए जानवरन जे डॉक्टर खा नालो वठी खरीद करियो।
2: सुनी

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

0: वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पिन साने की जांच कंदड़ कमेटी की शुरुआती रिपोर्ट से अहम हिदायतों जारी कर छड़ियों। जिम्मेवार करार दिनल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समेत अठ ऑफिसर के मुअत्तल करने के हुक्म भी दे छड़ियों। अमलदारन फौजदारी कानून तहत
1: Poetry, it is around us. The poetry of clarity. Water verse, the poetry of purity.
0: Senior Registrar Dr. Noshina Amjad, Assistant Director PIM Security Mohammed Usman, DG Emergency Service CDA Dr. Abdul Rahman ke bohde ta hatayo bhayo. Shahbaz Sharif chyo ta zimmewaran ke parat nak sadari nimi.
2: रिपोर्ट आएगी तो सब पता चल जाएगा। सारे रिपोर्ट
3: सर, इंतजार आपके रिजाइन का भी मुतालबा किया गया था, आप क्या कहेंगे इसमें?
2: वो जो है वो वजीर आजम से पूछे कि मेरे रिजाइन का क्या हुआ है।
3: आपने एक रिजाइन दिया भी है, इस हवाले से भी कुछ इतला दे, आपने रिजाइन पुट कर दिया।
2: वो रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा।
0: मुझी इस्तीफा बाबत वजीर आजम का पुछो वे सेहत वार वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल साथी वजीर तारक फजल चौधरी से गड पिम्स अस्पताल जो दौरो करे दौरो कयो। तारक फजल चौधरी चो तो पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट में सामूहींदड़न खिलाफ कार्रवाई थी।

0: पीपल्स पार्टी पिम्स थाने की जांच रिपोर्ट पदरी करने जो मुतालबो कर छोड़ो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते पीपल्स पार्टी के सीनेटर पलविशा खान सभी गठजोड़ है। शफाफ जांच किंती लगे तो नंढन ऑफिसर मथा मलबो किरा वो वन ऑफिसर के कुछ नाने जो शायदू मिटाने की कोशिश की रही है। पिम्स के टन साल दौरान 22 अरब मिलिया पैसा किथे लगा कि खर्च थे ऑडिट कराई वे।
1: आपको हैरत नहीं हुई कि एक डॉक्टर की उंगली नहीं कटी, कोई नर्स जख्मी नहीं हुई, कोई फायरमैन को आग नहीं लगी और 14 बच्चे जल के राख हो गए? क्या सर्विस डिलीवरी भाई, क्या सर्विस डिलीवरी हुई? कहां थे ये तमाम लोग? ये तो फिक्स होगा, ये तो फिक्स अब होगा और ये फिक्स होगा तो बाकी गुफ्तगू होगी। इसे फिक्स किए बगैर अब कोई गुफ्तगू नहीं।
0: वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक पारा पिम्स के हवाले से नाकामिन जो एतराफ़, मुल्की निज़ाम के भी मिटे मयार वारो करार दे छोड़ो। तकरीब के खिताब कंदे मुसद्दिक मलिक चयो तो कें भी सियासतदान जा बार पिम्स में इलाज करण नथा वन नई कें सियासतदान जा बार सरकारी स्कूलन में पढ़न था। इन फर्क के खात्मे ताई निज़ाम ठीक न थींदो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GAFM 94।